0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, गुड
0: मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग। क्या हुआ? क्यों?
0: नहीं मैम, मेरे को एक्चुअली काम नहीं करना आपकी जो कंपनी में। मैं परेशान होता हूँ।
1: इससे बैठ
0: वो आपने जो ऑफर
1: तो
0: दिया,
1: सही था। तू आराम से, अरे
0: कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं वैसे भी आपको रिजाइन कर
1: सुनो,
0: दूंगा।
1: बैठ जा आराम से, तसल्ली।
0: बताओ क्या। तो
1: अभी करना तो कर, तू सही कर ले। अरे
0: मैम
1: नहीं।

0: मैं मेरे निकल जाएगा आपको मेरे
1: इतने जल्दी
0: हाँ
1: अब मेरा चूड़ा निकलेगा क्या क्या

0: क्या हुआ, गीला करके डालना उसको। ओह शिट, मजा आ रहा ना अब तो।
1: आपकी सूट तो बहुत टाइट है।
0: अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा टाइट है क्या?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: उसका तो मेरा मन में ज्यादा की मोगरा बना दिया मैंने।
0: अच्छा, तो तेरा मोगा भी कितना है?
1: हाँ हाँ,
0: वो घोड़ों पे लोगा नहीं होता।
1: अच्छा,
0: और क्या उसकी तरह का ना, तो बड़ा सारा। ओह शिट, चूसे तेरे को चूक के अभी को तो मैं हावी हो रहा मेरे।
1: और क्या
0: साले, बहुत सुन रहे थे समझा ना। एम्प्लॉय बन के रहे, सैलरी काट लूं फिर मैं, समझे?
1: सूट दे देता हूं मैं।
0: आओ
1: ऊपर पैर करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा मेरे को।
0: चले, क्या गरम गरम डाला है। ओह शिट, दोनों
1: नहीं
0: कुछ छोड़ के जा रहा हूँ।